0: गिलास तुम कुफा भी
1: दिया मानना नी अंडरकिन आरा इकोलॉजी के वोलू है ना मानने अंडरकिन आरे इकोनॉमिक फारू जानुए मानो फेरुवना जान सो के चीने दे चारी आरुवना फुट निजू फा आताकुज़ याजा उन रो सही लांजा इकोनॉमिक सही आफा आना मापन रूस न्यूल ny fisina valanjavaboary dia tsy fanerenan'ny olona iaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.